0: मेरी माँ ने मैंने कैलकुलेटर दिया था। आ कोई एमईजी कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल चीज। मैं दो तीन महीने बाद से मंगवा सका, चंगी तरह माँ ने तंग कर दिया, माँ ने पता चला मेरी आदत में चीजें मंगनी। जो तो माँ ने मैंने इतना बड़ा तोहफा दिया कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्होंने चप्पी मारी, पता उन्होंने की किता वो वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरी छोटिया पैरों हमेशा चप्पिया मारती थी पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पा के क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नू सदूंगे।
4: उपर वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनू बुलाया, 500 पाउंड मैनू दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
2: इत्थे आ उपर, 10 दिनां च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बर्गर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी। 2000 पाउंड दान कर लो, मेरे नाल जप्पो।
5: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू, रैंडम गाइस ऑफ सोहो रोड कंपेल यू, pervy uncles with x-ray glasses compel you to leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
6: Radiation, the number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
7: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute and he was a musician.

0: Radiation, the number one station for the Boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए
0: बलदेव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Verdian, the last track. Got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines on My Roots. This track over here, Verdian, which just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the Boggle Asian.
6: One time.